ने उधर दे हुई सेवर लोला डाल जिरली है खेन है नम न उर जे खीर गुंगा भी अगर मत उल जे थोड़ी वे श्वे श्वे सुंगा हर थल की ही नहीं जरा चा चिंगियां वाले चुआई सिंदर चुशान तो शर्गंदर उल कब उच्चतल नल्ली लोग नल्ली होने हर थल की चुशान तो ला शुद्धी ये जे अमेरिकन डर में तलाशा तू लग शिकला लोमंदुर थुरगा भैया डंगसंदर थैलफसन थल्दा शंगनाली शिरो एहिकी उर्तो अनुद्रिन थला थुरील ते थल्दा चंग से हाई चिल्लों माहूतिया वांगे थोंगलियोशान लोशिंग मोटिनो सुधा मानगारी नुदर बिटन चाबीजी बेगा थुरुगा भैया बेगो सुगेगी जे लोमिंगी अनुद्रिन बेगो संगा भैया त्यातर है एलम बालबोश तात्रासन ही